0: नेपालीहरूको महान पर्व बड़ा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा देश विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ।
1: सरल सहयात्री पौडेल, आर्थिक मन्त्री, बागमती प्रदेश सरकार।

0: नेपालीहरूको महान पर्व बड़ा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में सम्पूर्ण आमाबुबा दाजुभाई दिदीबहिनी तथा देश विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ।
1: युवराज दुलाल, प्रतिनिधि सभा सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, सिन्धुपाल्चोक।

0: Elimbu FM 89.6 MHz. सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाले, वो बेवफा चलावा।

कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा

0: सही करना, वो जाके अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: LMWFM 89.6 MHz. 89.

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा
1: हूँ। अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

नेपालीहरूको महान पर्व बड़ा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाई दिदीबहिनी तथा देश विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। वडा अध्यक्ष सुदीप श्रेष्ठ, चौतारा सागाचो गढी नगरपालिका, वडा नम्बर 2, परिवार सिन्धुपाल्चोक।